धन गुरु तेग बहादुर सोच लै भाई धार लै अपने मन विच इसनो धार लै मतलब वसा लै मन विच सिर्फ चार दिनां दी गल है बंदा नाल तकबर फरिया कूड़े करदा माने मैं हां चतर सियाणा सुंदर शेर आप नू जाने आकड़ आकड़ चले किसे दे नक तले नहीं आने साई लोका जद फूका निकले आवे होश ठकाने ए बंदा जिन्ना मर्जी मान कर लवे पर उदो तक है जदो सब कुछ ठीक है जदो थोड़ी भी चीज गलत हो जावे कहता जी मैं बड़ा तकड़ा हां बलवान पर एक दिन मंजे ते पैजे निढाल हो जाता है। धन गुरु तेग बहादुर मसालो अपने मन में ए राग सिंधी

हेठ चलाएगा, आपे जे बड़े या आपे ही कर्म कराएगा, वडो बड़ावट मेरे सिरे से तंदे लाएगा, नजर मसी जे करे सुल्ताना काल कराएगा, धर्मंगन उपेख नाम कराएगा।

any number. And something surrounding you. जिसने ए मंग मंग ली है उसदिया सारिया मंगा पूरी और कड़ी मंग नानक को ब्रह्म माया कर सच देवो क्योंकि सच सदा रहने वाली है दूर दिखुटे नानका दूर में हो गया पूरे पदार्थ पहले भी नहीं रहे तो इस वास्ते हजूर पूर्ण दिखुटे नाम का पूर्ण सच और सिर्फ दी गई अर्थात पातशाह मैं सच्ची वस्तु जरा सच नाल जुड़ गए उसका जीवन भी सच्चा उसके कर्म भी सच्चे जिसके कर्म सच्चे हैं उस इंसान दुनिया सबका हाँ जी रस्ते चंगे रस्ते पे सच्चे मार्ग पे चलने वाला इंसान सच्चे कर्म करने वाले हजूर फरमाते हैं सच्चे मार्ग चल देना उस तुत करे सच जरा सच पिया बोलते और दुध पिया जरा झूठ पिया बोलता है और जहर पिया सच बोलन जेडा पुन कोई नहीं झूठ बोलन जेडा पाप सच पुराना ना नाम ना दे तो सच की है उस वाहिगुरु का नाम उस वाहिगुरु का पवित्र नाम नाम की वाहिगुरु जिस नाम ने उस नामी की प्राप्ति कराई और नाम केड़ा है वाहिगुरु वाहिगुरु गुरमंत्र है जब हमें वाहिगुरु गुरमंत्र है जब हमें उस वाहिगुरु को मिलने वास्ते साधन वाहिगुरु जिस तरह अंब का बूटा वह नाम भी अंब और जड़ा उसके उत्ते फल लगा है वह नाम भी अंब और सानू के अंब चाहिए फल तो फल की प्राप्ति वास्ते पहला अंब बूटा नहीं फिर उसकी राखी करनी है पूरी संभाल करनी है फिर सामू जरा अब फल है वह प्राप्त इसे तरह उस वाहगुरु की प्राप्ति का साधन ये वाहगुरु शब्द वाहगुरु गुरु मंत्र है जब हम ये गुरु का मंत्र बाबा इस सिंह जी महाराज वचन करते सन भाई ये गुरुमंत्र जो वाहिगुरु है ये दरगाही टिकट दुनिया भी सफर करना होगा ता भी टिकट की जरूरत टिकट तो बगैर सफर नहीं हो सकता और इसी तरह उस दरगाह जाने वास्ते मालक तक पहुंचने वास्ते प्लीज सानू टिकट चाहिए एक दिन रस्ती रस्ती दुनिया में छड़ के पुत्र धियां त्याग के किसी लंबे पेड़े इंसान ने किसी ने पूछा महाराज ऐ धन गुरु अर्जुन देव पातशाह पहला यह दसो भाई जिस रस्ते पे एक दिन इंसान भी तुरना है महाराज पहला दसो कितने वीर उसके कौ किने सब बॉम्बे जाना मीलों का पता
ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਟਿਕਟ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸੀਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਭ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਪੈਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ।

माया। किसी को माया आज इसे संभाल भी हर कोई सकता है, हर कोई माया संभाल नहीं सकता। बाबा जी उच्चारण करते हैं जिदे को ज्यादा माया आ जाए, पर माया दे नाल नाल उदे मन दे विच गरीबी भी हो जाए तो बहुत बढ़िया गल। पर बहुत मुश्किल ऐसे इंसान मिलते हैं कि जिन्हों के हिरदे विच माया दे नाल गरीबी नाम अमृत वेले का जागना होवे। पर कई तो इंसान माया दे विच ऐसा गफलत हो जाते हैं कि रब तो भी बेमुख हो जाते, नास्तिक बन जाते हैं हजूर उच्चारण करते हैं।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, सानू अपने ना पवित्र वचना के द्वारा ये दस रहे हैं कि साड़ी जीवन की यात्रा जो है वो सफल क्यों नहीं हो रही, उसके विच ऑब्स्टैकल्स की हैं। साड़े जीवन की जो विधि है वो किस किस्म की है, तो आओ गुरु बाबा जी के चरणों के विचों पूछिए, महाराज असी अपने जीवन की यात्रा किवें सफल कर सकते हैं, असी अपनी जिंदगी नूं किवें रंगीन बना सकते हैं। तो बाबा जी आखते हैं कि तुहानू तीन चीजा मिलियां, नंबर एक बॉडी माइंड एंड सोल, जो उस दिन शब्द के विच दास ने अर्ज की सी। तो सब तो पहला वह तन नू, शरीर नू जो पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं असं देखते हाँ कि यह जो शरीर सी एक वहीकल सी, एक साधन सी, जिस साधन दे नाल, जिस वहीकल दे नाल तुसी अपनी यात्रा जो है उसनू तय करना सी, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बॉडी जड़ी, अजीवात्मा इस दे विच ड्राइवर की तरह बैठा हो। बाबा जी आखते हैं किसी भी यात्रा ते सक्सेसफुली पहुंचने दे वास्ते जो उसका वहीकल है उसका परफेक्ट कंडीशन दे विच होना एब्सोल्यूटली लाजमी है। जे वहीकल बिगड़िया होया, जे वहीकल रिलायबल नहीं है, तो वो यात्रा जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। महाराज जी साढ़े वहीकल नु की होया, वट इज रोंग विद अवर वहीकल? वो आखते हैं इतने बस नहीं, जदों किसे ने किसे वहीकल दे विच अपनी यात्रा करनी होवे तो उसनु अपने वहीकल दा ए टू जी पूरा पता होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। तो गुरु साहब देखते हैं कि सानू अपना ये जो शरीर वहीकल है इसका कुछ भी पता नहीं, बस असी जन्म ले लिया है, शरीर सानू मिल गया है, भुख लगती असी खा लें, नींद आती असी सौ लें, प्यास लगती असी पी लें, बोल चाल लें, होर जो शरीर के फंक्शन हैं असी वो कर लें, पर सानू इस वहीकल का कोई पता नहीं है एक की चीज है, एक की चीज है। तुसी अपनी यात्रा किवें सक्सेसफुली अकम्पलिश करो जदों तुहानू अपने वहीकल के मुतलिक ही कोई पता नहीं, एक की वस्तु की है। नंबर एक दूसरी गल ए है जो साडे जीवन दे विच परमारथ रूहानियत आत्मिकता स्पिरिचुअलिटी पीस ऑफ माइंड स्टिलनेस स्टिलनेस ऑफ माइंड कामनेस ऑफ माइंड इनर जॉय एंड
ਇਨਰ ਬਲੈਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

काया कमली है चली उन्हां चीजां दे विच खो गई है, गुम हो गई है, रच गई है जड़ियां चीजां ने इसे नु ही खराब करना। स्वाद हन इसलिए ही काया दे वास्ते ही डैमेजिंग बन जांदे हन, लेकिन काया उन्हां दी एडिक्टेड हो जांदी है, इस करके कहिंदे काया कमली। अल्कोहल काया लिए अच्छी है लेकिन काया नु नहीं पता, काया उसकी एडिक्टेड हो जांदी है जो चीज ने इसे नु ही बर्बाद कर देना है। तो ड्राइवर जो अंदरला है वह बहुत कमजोर है, वह काया का गुलाम हो चुका है, काया ने ड्राइवर नु ढालिया है, काया जो मंगती है वह उसनु प्रोवाइड करी जा रहा है। काया कमली हंस आना तो जिहड़ा हंस है जिहड़ी अंदरली आत्मक जोत है वह कहिंदे हले बहुत मध्यम है, वह न्याणा है, वह हाले उस बुजुर्गी नहीं आई क्योंकि उसने बुजुर्गों की महापुरुखों की विचार अपने अंदर ग्रहण नहीं की, ना सुनी ना समझी ना विचारी, तो उस दे अंदर बुजुर्गी नहीं आई। वह आना है जिधर काया लाई फिर है उसके पासे वह चलिया फिर है, सारी ह्यूमन सोसायटी जी है वह काया के पिछे चल रही है, सारी ह्यूमन सोसायटी काया ही प्लीज करन दे उते लगी पई है। काया कमली हंस आना एक पंक्ति च हो रखते हैं महाराज जी, कहते हैं

आशा बंदी मूर्ख दे, ए दे बड़ी मूर्ख है, अगां तो अगां दियां आशा बंदी जा रही है, पर इस देही नूं ए नहीं दिसदा कि मैं बड़े लंबे समय दे फ्यूचर दे वास्ते अपनियां जो आसामां बंदी हां, पर ए नहीं सोचदी कि मैं रहना कदों तक है, कि डे बाय डे मैं ताकतवर होना है कमजोर होना है, डे बाय डे मेरी एज घटनी है जां वधनी है, डे बाय डे मेरा एनर्जी लेवल वधना है जां घटना है। इस करके एक कंसर्न ही नहीं है, इसका जीव आत्मा इतना न्याणा है कि वह सोचना नहीं कि दिस इज गोइंग टू बिकम वीकर एंड वीकर एंड वीकर, इस दे वास्ते टाइम से इस तो मैं अपना कम लवां, और सगों इस दे नाल रलिया होया है अते काया ये जड़ी बड़ी मूर्ख है। तो यह साड़ी सत्संग की हालत है कि इंद्रियां सबल हैं, असी इन्हां नूं वरतना सी पर यह हुण सानूं वरत रही हैं, असी इन्हां नूं वरतना सी पर वरत ए रही हैं सानूं। तो कितनी ट्रेजेडी की गल है, कितने अफसोस की गल है। महाराज जी ने ए इंद्रियां सानू दित्तियां सन कि इन्हां दे नाल असी अपना परमार्थ की जो यात्रा है वह सिद्ध करनी है, सफल करनी है। और फिर महाराज जी पूछते हैं, भाई ए श्रीदा मेरिया इस जग में आए कि क्या तुद कर्म कमाया, कि तू की कीता है, तू तो सारे दे सारे अपने इस इंस्ट्रूमेंट नू ही डैमेज कर लिया है। पूंडी चाल कहिंदे अखीर जाके बिरध उम्र दे विच जाके तेरी चाल भी नहीं सुनी रह जांदी, डगमगा के तुरदा है, सोटी दे नाल तुरदा है, लंगड़ा के तुरदा है, पूंडी चाल यानी चाल ही अगली हो जांदी, चरण कर खिसरे, हाथ अते पैर ओ खिसक गए हन, ओ कंबदे हन। तुचा देह कुमलानी, जड़ी देही दी तुचा है, जड़ी स्किन है, चमड़ी है, ये ते कुमला गई है, ते झुरड़ियां पै गई हैं, फिर असी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करा के उसनु असी लिफ्ट देने हैं, अपलिफ्ट कराने हैं। तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद, उन्हां अखियां ने जिन्हां ने ज्ञान पढ़ना सी, साधुआं दे दर्शन करने सन, वो कुछ होर कर दियां रहियां, गुरमुखां दे दीदार नहीं किते, गुरबाणी दे दीदार नहीं किते, गुरबाणी पढ़न दा मौका नहीं मिलिया, गुरबाणी पढ़न दा इंटरेस्ट नहीं बनिया, सतपुरखां दे विचार पढ़न दा इसने इस्तेमाल नहीं लिया। हुण कहिंदे नेत्री धुंद, नेत्रां दे विच भी धुंद आ गई है, फॉग आ गई है, क्लीयर दिसदा नहीं, कर्ण पै बहरे, हुण कन्नां तों भी घट सुणदा है। कन्न मिले सन सत्संग सुनण लई, रब दी गल सुन ली, उस पाथ ते चलण दे वास्ते, वध तो वध इनफॉर्मेशन सुनन दे वास्ते, पर कहिंदे हन हुण ओह वी समां लंघ गया, करन पै बहरे मनमुख नाम ना जानी, इस मनमुख ने नाम रूप वस्तु नूं कहिंदे जिस दे नाल इसने थ्रिल्ड होना सी, फुलफिल्ड होना सी, कंप्लीट होना सी, अकम्पलिश्ड होना सी, सक्सैसफुल होना सी, ओह कहिंदे इस मनमुख ने जानी ही नहीं। तां महाराज जी इस इंसान नूं कहिंदे हन, अंधले क्या पाया जगया, ओए अन्ने तू इस जगत दे विच आके की पाया है, की प्राप्त कीता है,

मानस जन्म दुलंब है, होए ना बारंबार, जो मन फल पाके पोहिंगरे बहर न लागे डार। जिस तरह दरख्त दे नालों टुट के फल नीचे गिर जाए ते दोबारा और टाणी दे नाल नहीं लगदा, एक दफा ए दुर्लभ तन जो है जदों गिर जाएगा धरती उते, फिर इस दे वापस उठन दी कोई उम्मीद, कोई आशा, कोई चांस बिल्कुल नहीं है, ये दुर्लभ। सो वी आर कैरिंग समथिंग विच इज सो इनवैल्यूएबल। हाउ वेल्थी वी आर एंड हाउ मच थैंकफुल वी आर, वी नीड टू आस्क दिस टू अवर सेल्फ। दूसरा नुक्ता, नंबर एक दुर्लभ, दूसरा नुक्ता गुरु बाबा जी आखते हैं ये मंदिर है। कदे असी सोचे कि मैं ही मंदिर हां? आप जी ने कितनी दफा ये विचारिया सोचा होएगा कि यही मंदिर है। बाबा जी की बाणी दसदी है कि मंदिर की है। जो सोचते विचारते जानते हैं ऐसे गुरमुखों नूं तां मैं नमस्कार करदा हाँ, पर असी बाणी चों तन दे प्रति बॉडी दे प्रति ही इनफॉरमेशन नहीं लई, असी कई दफा बाहरों इनफॉरमेशन इकट्ठी करते फिरते हाँ, जबकि साडे गुरु साहिबान ने इतना भरपूर ज्ञान बख्शिया है सिर्फ बॉडी दे मुतलक ही। अज इत्थे 10 दिन कीर्तन करिए इस चीज दे उत्ते भी, सिर्फ इस चीज दे उत्ते ही, तां भी ओ इनफॉरमेशन जो है ओ कंप्लीट नहीं हो सकेगी कि बाबा जी ने तन दे उत्ते सानू की कुछ दसिया है कि तन की चीज है, पर असी उसनू किसे होर ही फैशन च पढ़ते हैं। सोच विचार के पढ़ना, ज्ञान नाल पढ़ना ओ होर चीज है। आओ दूसरा नुक्ता, दूसरा पॉइंट महाराज जी दसते हैं ये मंदिर है, टेंपल ऑफ गॉड, दिस इज द रियल टेंपल। इस तो बिना होर कोई टेंपल नहीं, बाणी च किते नहीं आके कहिंदे ए मंदिर है। बाणी दा प्रमाण सुन कहिंदे हन

स्पष्ट है नुकता, हर मंदिर ये शरीर है, ये शरीर हरि का मंदिर है, फिर से इसमें भी नमस्कार करनी बनती है, फिर से ये पूजन योग है। जे ये हरि का मंदिर है, हर मंदिर ये शरीर है, काया महल मंदिर घर हर का हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का एक घर है, अकाल पुरख वाहिगुरु के निवास का स्थान है। तो फिर सानू इस मंदिर नू मंदिर की तरह रखना चाहिए है। मंदिर के अंदर की हुंदा है, मंदिर के अंदर शांति हुंदी, मंदिर के अंदर पूजा हुंदी, मंदिर के अंदर कीर्ति हुंदी, मंदिर के अंदर रेवरेंस हुंदी है। मंदिर के अंदर पवित्रता ही हुंदी है, पवित्रता ही हुंदी है। मंदिर के अंदर रब्बी संगीत हुंदा है, डिवाइन म्यूजिक हुंदा है, कीर्तन हुंदा है। मंदिर के अंदर संगत हुंदी है, साथ संगत हुंदी है। अगर ए मंदिर है तो फिर इस मंदिर का जो एनवायरमेंट है वो सारा मंदिर वर्गा ही होना चाहिए है। अगर ए मंदिर है तो इस दे अंदर शांति होनी चाहिए है, टिकाव होना चाहिए है, इस दे अंदर हर वक्त पूजा आराधना होनी चाहिए है, इस दे अंदर सत्संग होना चाहिए है। मंदिर च प्रभु जी का निवास हुंदा है, गुरुदेव हुंदे हन, इस मंदिर दे विच भी हर वेले गुरुदेव की प्रेजेंस महसूस होनी चाहिए है। मंदिर दी असी कदे बेअदबी नहीं करते, उपर असी जोड़ा पा के नहीं आ सकते क्योंकि बेअदबी हो जाएगी, फिर इस मंदिर की भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मंदिर की बेअदबी बड़ा वड्डा गुनाह है। इस मंदिर की जो कि इट्टा नाल लकड़ियां नाल पत्थरां नाल बनया है, असी कितने कंसर्न हां कि बेअदबी ना होवे, पर इस मंदिर की बेअदबी जितनी मर्जी हो जाए उस दे वास्ते असी कदे कंसर्न नहीं है। सर्टन थिंग्स तुहानू पता है कि असी इस मंदिर च नहीं लिया सकते, खाण वालियां पीण वालियां इस मंदिर च असी नहीं लिया सकते, ना असी इत्थे कुक कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना वरता सकते हैं। अगर लै आइए बनाइए खाइए पीए तो इत्थे झगड़ा हो जाएगा, पर वो वस्तुआं इस मंदिर च असी किवें लै जाने हैं जिसनू महाराजी मंदिर आखते हैं। इस मंदिर च असी वो तमाम चीजा ता ही ले जाने हाँ कि सानू ये ज्ञान ही नहीं मिलिया गुरु बाबा जी की बाणी तो हाले तक कि असल मंदिर इंसान आ तेरा शरीर है, इस मंदिर दे अंदर ओ ही कुछ ले जा जो जान दे योग है, इस मंदिर दे विच कोई भी ऐसी वस्तु पाई जो योग नहीं है बहुत वड्डा गुनाह अते बहुत वड्डा पाप हो जाएगा। इस मंदिर नू पवित्र तो वध के पवित्र रख,

अवर न पेखे एक सबिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अस्पदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कह तीज एक जीव बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक जीव पावक का सहज सुभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए परगास जैसे तरु पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मेया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमहा। ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी के होए सो पला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उतार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम अतार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाय ताखुर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी

राजे, कोई ऐसे राजे जो 300 साल पहले भी तक ते बैठे सन ते आज भी बैठे हैं। कोई राजे जिन्हां उत्ते 300 साल पहले भी छतर चल रहे सन ते आज भी चल रहे हैं। वो राजे हैं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी।